बूढ़ी गंडकी बूढ़ी गंडकी में ठूलो बाड़ी नदी किनार का बासिंदा को बिहान भाग भाग एमाले धादिङ क्षेत्र में दुई द्वारा चाड़ पर्व विशेष शुभकामना आदान प्रदान धादिङ में चाड़ पर्व लक्ष्य सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापन में कड़ाई गरिने

0: जनता केवल पांच दशक देखि
1: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

रेड द हरिङ एक्सेस अन्य गहर्ज का साथ ही इंटरनेट अनलाइन को www.redthehariङ.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6:45 बजे को खबर में म ब्रेक को नमस्कार। खबर को शुरू में मुख्य खबर।